हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आप किसी संकट का ध्यान से विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि वो या तो आगे बढ़ने का अवसर है या वो वहीं रुक जाने की चेतावनी है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 333। 6:45 पर संगीत सरिता में आप सुन रही हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए श्रृंखला का भाग 6 आमंत्रित कलाकार।

कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका है ममता सिंह और संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भोले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। अभिनेता है विनोद खन्ना। आलेख और स्वर राजेंद्र त्रिपाठी का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे सेहतनामा में PCOD IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सदा बहार नगमे। 3 बजे सुनिए सखी सहेली। शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे में अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। संपादन सहयोग है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका वजन घटाओ। लेखन है VM आनंद का, निर्देशन है कमल दत्त का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक और 9 बजे आपके लिए।

10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है ममता सिंह का। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अपनी चतुरंगिणी सेना की अगणित टुकड़ियों के साथ रावण युद्ध भूमि में उतरा है। तरह तरह के रथ तथा वाहनों पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही हैं। ऐसी विशाल सेना के पदचाप से इतनी धूल उड़ी है कि सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया है, पवन जैसे ठहर गया है, पृथ्वी आतंकित है, दिशाओं के प्रहरी हाथी डगमगाने लगे हैं, ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से दिशाएं प्रकंपित हो रही हैं। रावण रथ पर सवार है, जबकि सामने अपने भीमकाय वानर और रीछ योद्धाओं के साथ श्रीराम पैदल। दोनों पक्षों के सेनानी एक दूसरे को ललकार रहे हैं। विभीषण के मन में शंका घिराती है कि रथ पर आरूढ़ रावण को श्रीराम किस प्रकार पराजित कर सकेंगे। श्री राम मुस्कुराते हुए उनकी शंका का समाधान करते हैं, युद्ध में विजय सदा धर्मरथ की होती है। शौर्य और धैर्य उसके पहिए होते हैं, सत्य और शील उसकी पताकाएं, बल विवेक इंद्रिय शमन और परोपकार उस रथ के अश्व होते हैं जो क्षमा दया और समता की रस्सी से जुते होते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं छठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा हमारे सामने मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि उनके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला है संगीत सरिता की इन कड़ियों में, और जो उन वो ज्ञान के मोती हमें दे रहे हैं, हम भी अपने को समृद्ध कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी समृद्ध हो रहे हैं। आज KL सहगल के बारे में वो जानकारी देंगे।
2: कुंदन लाल सहगल जी की कुछ रचनाओं को मैं सुनवाना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं, चूंकि बात हो रही है भक्ति रस की
1: जी,
2: तो एक रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत अद्भुत आदान प्रदान हुआ है। इसका मतलब कि जो कबीर साहब ने लिखा था
1: जी,
2: वो आपको कहीं महाराष्ट्र में, कहीं कर्नाटक में, कहीं बंगाल में वही भाव आपको मिल जाएगा। या मीराबाई ने अगर कुछ लिखा था, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं उसमें से एक भी भजन मीराबाई का नहीं है, यानी कि उनकी भाषा में नहीं है। अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। तो हमारे यहाँ साधुओं की एक भाषा होती थी, जो साधु बन जाते थे उनकी आपस में बातचीत करने की जो भाषा होती थी उसको हम सधुखड़ी बोलते थे। जो हम बहुत ही अच्छी भाषा हिंदी में बोलते हैं उसको हम खड़ी बोली बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ी, मेवाड़ की भाषा में थे
1: जी।
2: अब मेवाड़ी भाषा को समझना आसान नहीं था, तो उस समय गीता प्रेस गोरखपुर के आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने वियोगी हरि नाम के, जो बाद में एक बहुत बड़े कवि बने, वियोगी हरि जी को, जो बिल्कुल तरुण थे उस समय, उनको दायित्व दिया कि भाई तुम इस इन सारे मीराबाई के भजनों का सरलीकरण करके मुझे दो ताकि मैं ये प्रकाशित करूं तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा
1: जी जी,
2: क्यों गीता प्रेस से उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने वो भाव तो सब समझ लिया है पर इसकी भाषा क्या हो। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्या। बोले मेरे हिसाब से इसको कबीर की भाषा में करते हैं। बोले अच्छा ये कौन सी भाषा है। तो बोले कबीर की जो अधिकांश भजन है वो सधुखड़ी भाषा में
1: जी जी।
2: तब आपको मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ कि कबीर का जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अब ये भोजपुरी नहीं है, ये सधुखड़ी भाषा है। तो वियोगी हरि जी ने लिखा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए
1: जी।
2: तो ये इस तरह का हमारे यहाँ बहुत सारा प्रयोग हुआ कि भाव की यात्रा हुई
1: जी जी,
2: शब्द कहीं पीछे छूट गए। और वैसे भी हमारे यहाँ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है भाव, या आपके भाव कैसे हैं। तो ऐसे ही एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, यद्यपि मैं स्वयं भी गाता हूँ, हम सब गाते हैं, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया
1: जी जी।
2: जिन कवियों का पूरा आपको संग्रह मिलता है उसमें से एक कवि का नाम है तुलसीदास, जिनका लिखा हुआ आपको रामचरितमानस मिलता है, फिर बहुत सारी उनकी रचनाएं,
1: रामायण है और मतलब रामायण अलग सरलीकरण करके
2: तो वो सब है, लेकिन कहीं भी आपको ठुमकी चलत रामचंद्र नहीं मिलता है। ऐसे ही कबीर के भी बहुत सारे भजन हैं जो आपको कबीर के बीजक में या कबीर की पुस्तकों में या गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिलते हैं, पर वो जनमानस में लोकप्रिय हैं। तो इसका एक कारण ये था कि उस समय जो भी लोग थे उनका कहना था कि ये भाव तो पहुंच जाए
1: जी, हाँ
2: ये भाव चला जाए, अच्छी बात है, लोगों को मालूम होना चाहिए
1: जी।
2: तो उस तरह से इसलिए जब फिल्में बननी शुरू हुई तो उस समय इस तरह के भी प्रयोग हुए कि कुछ तो उन्होंने ओरिजिनल जो भजन थे वो ले लिए। अभी जो आप आदरणीय कुलंदर लाल सहगल जी की हम रचना आपको सुनाने जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम था भक्त सूरदास
1: जी जी।
2: श्री DN मधोक एक बहुत अच्छे कवि थे, उनके शब्द हैं।
1: शेखर दादा हमारे

0: जहन में एक सवाल आ रहा है कि उस दौर में जब कुंदनलाल सहगल गा रहे थे तो उस समय बहुत सारे दिग्गज कालजयी कलाकार थे, कानन देवी थी, खुर्शीद और पंकज मलिक, तो ये एक दौर था, एक पाठशाला थी इन गायकों की, तो उस दौर की जो गायन परंपरा थी उसकी कुछ विशेषता अलग से थी, ये कुछ बताएंगे इस बारे में?
1: सबसे पहले तो एक बांग्ला का प्रभाव था, मैंने 1930 से लेकर के 1945-46 तक के गानों में
0: जी।
1: आपको बंगाल का एक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि आरसी बोराल और पंकज मलिक, स्पेशली पंकज मलिक जी, और बाद में वो कंटिन्यू हुआ यहाँ पर, जब बंगाल में आए तो सचिन देव बर्मन
0: जी, जी।
1: फिर आपके सलील चौधरी और इस तरह के सारे, और सिंगर्स भी आए, हेमंत कुमार जी,
0: जी।
1: तो एक बंगाल का वो एक प्रभाव रहा, पर उसमें अच्छी बात ये थी कि उसमें पंजाब का भी अंश मिलने लगा, पंजाब के भी बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार थे, महाराष्ट्र तो भक्ति की धरती थी,
0: जी जी।
1: जिस शहर में मैं इस समय रहता हूँ पुणे, उसको पुण्य नगरी कहा जाता था
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी।
1: सारे संतों की भूमि थी वो, तो ऐसी बहुत विशेषताएं यहाँ पर जुड़ती गईं, और कभी भी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ किसी भी चीज में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, संतों को लेके लड़ाई नहीं है
0: जी।
1: आप समझ रहे हैं?
0: बिल्कुल।
1: अगर विवेकानंद आते हैं तो कोई ये नहीं कहता अरे ये तो बंगाली हैं भाई, हम इनका काहे को सुने हम कोई
0: जी,
1: आप
0: जी।
1: देखेंगे उनके ऊपर कोई कार्यक्रम होगा तो तमिलनाडु के भी लोग आ रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: और पंजाब का भी व्यक्ति आ रहा है कबीर सुनने के लिए, उड़ीसा का भी व्यक्ति देख रहा है, तो हमारे यहाँ ये बहुत उदारता रही हमारे संत वाणी की, कि उन्होंने पूरे समाज को जोड़ कर रखा। कुंदन लाल सहगल जी एक विशेष गायक थे, आज के श्रोताओं को शायद अनुमान नहीं होगा लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी, यानी मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरी बुआ
0: जी।
1: और हमारे दादाजी के कालखंड में जो सुपरस्टार हुआ करते थे उनका नाम था K.L. सहगल,
0: बिल्कुल,
1: और लोग पागल थे उनके, और ऐसी उनकी अद्भुत आवाज थी कि वो उनकी जैसी आवाज केवल उनकी ही थी, और मैं चाहता हूं कि हम लोग अब मधुकर श्याम हमारे चोर, सूरदास जी के शब्द हैं, आप लोग इसका आनंद लें।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये रचना।

0: दो।
1: आपने अभी ये रचना सुनी आदरणीय कुंदन लाल सहगल जी के स्वरों में, मधुकर श्याम हमारे चोर। सहगल जी उन गायकों में से हैं जिन्होंने कलकत्ते में भी भरपूर काम किया और फिर मुंबई आकर के यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मुंबई में वो रहते थे माटुंगा में, हमारे सेवन गार्डन्स के पास उनका बंगला था। और मैं जब पहली बार मुंबई आया तो मुझे पता नहीं था कि वो कभी कहाँ रहते हैं, तो मैंने ढूंढते ढूंढते मैं उस गली में गया। मैंने कहा सहगल साहब कहाँ रहते थे, बोले यहाँ रहते थे। तो मैं बाहर जाकर उस मकान को प्रणाम करके आया,
2: क्या बात
1: वहाँ की धूल। क्योंकि ये सब वो गायक हैं जिन्होंने हमारी

0: पीढ़ियों को सींचा है
1: जी,
0: तो मैं चाहता हूं कि एक और रचना हम सहगल साहब के स्वरों में सुने और आज के इस शताब्दी की भक्ति रस में ये एक रस का एक बूंद, रस की एक बूंद हम लोग जरूर उसको ग्रहण करें। कहूं क्या आस निराश भई।

0: आज की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में अगली कड़ी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की आज आपने छठवीं कड़ी सुनी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमर फिल्म के इस गाने के साथ, लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संग।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं लता मंगेशकर की।

भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से 102.8 FM पर। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों के बाद।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओ रे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनते हैं फंटूश फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमर अकबर एंथनी इस फिल्म के गाने के साथ किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं द बर्निंग ट्रेन फिल्म से आशा भोसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: बर्निंग ट्रेन इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत, हाथ की सफाई। इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार

परवरिश फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की आवाज़ में ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना इंकार फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब

0: समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

0: जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माय ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर Trivandrum or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
2: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है पत्थर पर। सड़क किनारे पड़ा एक साधारण सा पत्थर शायद हमें बहुत सामान्य सा दिखाई देता है। हम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब किसी शिल्पकार के हाथों में पहुंचता है तो लगातार चोट और तराश के बाद एक सुंदर मूर्ति या बेशकीमती कलाकृति का रूप ले सकता है। यही पत्थर हमें जीवन का एक गहरा संदेश

देता है कि मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वो हमें तराशने आती हैं। पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दृढ़ता। वो धूप, बारिश और मौसम की मार सहता है। कभी वो रास्ते का हिस्सा बनता है और कभी किसी इमारत की नींव, तो कभी किसी कलाकार की कल्पना का एक सुंदर रूप।

एक पत्थर का महत्व उसकी मजबूती में छिपा होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। रास्ते में आने वाली असफलताएं, आलोचनाएं, परेशानियां और संघर्ष हमें भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों से हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए छेनी की चोट जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य, आत्मविश्वास और दुनियादारी की समझ सिखाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, लेकिन शायद हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई किसी नई क्षमता को सामने लाने का अवसर होती हो।

जिस पत्थर ने चोट सहना सीखा वही मूर्ति बनकर सम्मान पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कठिन परिस्थिति को चुपचाप सहते रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर सही लोगों से मदद लें, अपने गलतियों को स्वीकार करना सीखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। सड़क पर पड़ा पत्थर किसी के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन किसी कलाकार के लिए वही पत्थर अनमोल हो सकता है। इंसान की क्षमता भी ऐसी ही होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। चोटों से घबराना मत, हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ चोटें तुम्हें तराशती हैं और वही तुम्हें एक दिन खास बना देती हैं।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है 102.8 FM पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय मराठी समाचार आप सुन सकेंगे बस कुछ ही पलों में।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना टशन फिल्म से उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर। इनकी आवाजें हैं पीयूष मिश्रा के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नीलन्नी की इस फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरेओ और डोमिनिक सेरेओ की आवाजों में, अन्विता गुप्तन के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं बार बार देखो इस फिल्म से, अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में कुमार के बोल अमाल मलिक का संगीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

0: बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों, सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है।
3: तो भी हमें क्या करना चाहिए?
2: जो पंचों की राय,
3: तुमने लड़की को देखा?
2: देखा,
3: लड़की पसंद है।
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
4: दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है।

उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे।

0: ये अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान, या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: हाथ आयु ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है।

अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। वो बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपना भी देख के आएगा।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
3: जरूर देखा होगा साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लक्की मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम भी तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगे लाया, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: फिल्म हेरा फेरी।
1: पर चिंता की कोई बात नहीं,
2: नहीं
1: हम हैं तेरे साथ,
2: बिल्कुल,
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात,
2: क्योंकि

0: की है फेरी है।
1: और ये है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह आपने सुना पीसीओडी और आईवीएफ, इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। आइए अब सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग।
1: डॉक्टर साहिबा, आज हम महिलाओं को लेकर उनकी बीमारियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को इन बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। डॉक्टर ज्योति, तो अब जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जिससे हर महिला कभी न कभी गुजरती है
2: जी।
1: और वो समय है मेनोपॉज
2: जी।
1: क्या है ये मेनोपॉज और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में ये शुरू हो सकता है? एक आम महिला भी ये जानना चाहती है कि मेनोपॉज आखिर है क्या
2: जी। जैसे ये वर्ड बताता है मेनोपॉज, मेनो यानी पीरियड्स, पॉज यानी बंद होना, स्टॉप होना। एक लेडी के ये जर्नी में जब पीरियड बंद हो जाता है इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये बंद कितना टाइम तक होना चाहिए, जब हम उसको लेबल करें एज मेनोपॉज की एक साल जब पीरियड नहीं होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, एक साल के बाद ही उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके पहले अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं उसको हम पेरी

0: मेनोपॉज बोलते हैं। तो बेसिकली पीरियड क्यों बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडा फूटता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो जब फूटना बंद हो जाता है यानी ओवरीज में जो एग्स हैं वो टोटली खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरली नहीं है तो फूटेंगे नहीं तो पीरियड नहीं आएगा, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है उसके पहले का पीरियड जिसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं, एक वो टाइम है जब काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि मेनोपॉज में क्या एग्जैक्टली होता है, कि एक जो मैंने बताया अंडे ख़त्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ओवरीज में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, तो ओवरीज वो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जब मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है धीरे धीरे, एक्चुअली जो पेरीमेनोपॉज है यानी ईस्ट्रोजन लेवल की प्रमाण मात्रा कम होने लगती है, और एक टाइम आता है जब वो टोटली बंद हो जाता है सिक्रीट होना ओवरीज में से, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, तो इसकी उम्र क्या होती है, किस उम्र में शुरू हो सकता है?
0: सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया 45 टू 50 इयर्स है, उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है।
1: कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से जब बातचीत होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें अभी भी जो है मासिक धर्म होता है।
0: जी जी।
1: तो कई बार सवाल होता है कि अरे आपको भी मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ?
0: जी।
1: तो नहीं होता
0: जी,
1: तो इसकी उम्र बड़ी भी हो सकती
0: है? यस, बड़ी भी हो सकती है। सो कभी कभी 55-56 तक भी लेडीज को पीरियड आ सकता है।
1: अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
0: नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब उनके अंडे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अभी भी मेंस्ट्रुएट हो रही हैं।
1: तो अच्छी बात क्या है, सही समय पर मेनोपॉज हो जाना चाहिए या लंबे समय तक आपको मासिक धर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं?
0: कोई भी चीज कम या ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो अगर पीरियड जल्दी बंद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत लेट तक भी चलता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो इट हैज टू बी जो रेगुलर टाइम में होना चाहिए वो टाइम पे हो तो बेटर ही है। तो अगर वो जल्दी बंद होता है यानी 40 के पहले अगर पीरियड बंद हो जाता है उसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर लेट बंद होता है 58-60 तो दैट इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग। जी, प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी वो जल्दी वो सिम्टम्स आना वो भी लेडी के लिए अच्छा नहीं है, और जब लेट होता है पीरियड मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है दैट मीन्स बॉडी में ईस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक, तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
1: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत
0: जरूरी है। यस।
1: आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा, एक गीत सुन ले आपकी पसंद का।
0: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती हैं, सुनते हैं ये गीत। चुरा

0: जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है। पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज। ईस्ट्रोजन जो ए हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनाइक रिलेटेड नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है। आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पांव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है। तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस। तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं तो लेडीज काफी टाइम, ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्सचर उनका कोर्स हो गया है, ये एक है। फिर चिड़चिड़ापन, जैसे जब आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है।
0: अच्छा जी।
1: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमोटर सिम्टम्स हैं। फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आंखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडीज काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफ़ी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है।
0: जी, अच्छा
1: जी। तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, राइट। तो ये हार्ट में हो सकता है। बोन्स को स्ट्रांग रखता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है। तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले, समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है। आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, यानी जो अपने सीनियर्स हैं, जो अगर ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफ़ी टाइम हम देखते हैं व्हील चेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को जान के उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली, मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफ़ी हद तक, काफ़ी एज तक, 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल लॉस, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद, और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद।
0: अच्छा जी, ध्यान रखना होगा।
1: जी डेफिनेटली, डेफिनेटली
0: ध्यान रखना होगा। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने माहवारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है, और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है, तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रही हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती हैं अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही हैं, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है, आपने कहा कि शरीर में आने वाले जो बदलाव हैं, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे।
1: तो अगर ये सिम्टम्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम ईस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेक गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना ले, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए। बट ज्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग, ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं। और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट, मतलब इस चीज का इंपॉर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं, कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पे अगर ध्यान दें, तो काफी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं। और अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन।
0: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम कि थेरेपी होती भी है कि नहीं।
1: जी जी जी।
0: तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से, हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई।
1: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है। तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो, जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सॉल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए।
0: जी, तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं।
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए।
0: क्या बात है। लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई है, गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। उमराव जैन फिल्म से ये गाना,
1: आशा भोसले
0: जी, आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है। आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ़ शी इज़ डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मीन्स आर्टिफिशियली हम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम।

0: ले सकती हैं जी।
1: तो क्या एक आम महिला इसकी खर्च को वहन कर सकती है?
0: यस दे कैन, मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
1: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें जो बहुत मेहनत करती हैं, हार्ड तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
0: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती है जी।
1: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा
0: और मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमॉस्फेयर, जो फैमिली देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट,
1: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना
0: जी जी।
1: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर
0: जी।
1: तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
0: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी।
0: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके, और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है। मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुल ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए
1: जी, जी।
0: और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज़ में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे का देखभाल 24/7 बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
1: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती
0: जी
1: है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर बात को वही खत्म कर देते हैं कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें सोचना होगा।
0: यस एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात। और महिला को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
0: वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज में भी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं। बट अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं।
1: अच्छा,
0: एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है
1: जी,
0: जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती है,
1: महानगरीय व्यवस्था में तो और भी ज्यादा
0: जी। तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है। तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं, थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड, अगर मम्मी को थायराइड है या आप PCO हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी थायराइड की, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना
1: चाहिए
0: जी।
1: यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में
0: इज फाइन
1: रूटीन चेकअप होना चाहिए
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो, ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
0: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवावस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था

0: हमें भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
1: दूर रहना
0: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें। होममेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं, काफी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है, तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिन की डेफिशिएंसी, काफी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ हैं?
1: हाँ, वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे, और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे।
0: यस।
1: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे,
0: यस, और फिर सो जाते थे थक के। यस,
1: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था।
0: जी जी।
1: और घर का बना हुआ खाना, उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं।
0: जी जी, बिल्कुल।
1: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है, माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए। सभी कारण भी मिलजुल कर इन चीजों को देखते हैं।
0: यस, तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है, तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात, आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है।
0: बहुत, काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे, यू नो, कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को। इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और खुद भी वो फॉलो करना है। एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहां 1 घंटा निकल गया पता भी नहीं चलता है। तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा।
1: बिल्कुल, आपने कहा, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे, और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे, जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था, वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी।
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं। कौन से गीत सुनेंगी आप?
0: देयर आर सो मेनी। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम,
1: ये गाना सुनना चाहती है, फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
2: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना ताना एक समान।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला, आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ है कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके।
0: जी।
1: तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब। और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस। और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी,
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इशू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है।
0: जी।
1: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है, IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम 4-5 या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन देके ज्यादा अंडा जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफकोर्स हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब
0: बिल्कुल,
1: तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं।
0: जी, तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
1: तो सबको तो नहीं होती है। कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया। इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
0: अच्छा,
1: तो भी काफी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
0: अच्छा
1: जी, अगर स्मोकिंग है ड्रिंकिंग है वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफी हद तक
0: इसे दूर किया जा सकता है
1: नेचुरली, यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और दूसरी एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ मतलब नेचुरली है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है, बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है हस्बैंड के स्पर्म्स हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपॉजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपॉजिट करते हैं, बस खाली उतना
0: फैसिलिटी।
1: हाँ, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है।
0: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है, ये डॉक्टर
1: पहले तो यस ये पहले सब टेस्ट होती है। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं, ये नहीं है, ये जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है। काफी हद तक आई वुड से 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम
0: ये समस्या होती है, और ये तो
1: कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती है, लेकिन ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में तो बहुत ही डिफिकल्ट,
0: और गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि महिला बांझ है और उसे बड़ा मतलब बुरा सुनना पड़ता है, जिसका दुख होता है। आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते हैं।
1: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो, बट एक्चुअली हस्बैंड हू इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल, लड़की या बॉय।
0: जी बिल्कुल सही कहा, इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो है भ्रम उतरा है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
1: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म,
0: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना ज़रूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब IVF ऐसा नहीं है कि IVF करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ IVF सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि IVF से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: बात का भी ध्यान रखना है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है?
1: Yes.
0: इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइदर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है, बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपल आके

0: हस्बैंड डिस्कस करे जो भी इश्यूज हैं उसको
1: डॉक्टर के सामने
0: रखें और फिर उससे डील करें, क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
1: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
0: ये जो फर्टिलिटी जो है ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े। वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एग फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। कि एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टेन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टेन टेस्ट करते हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज के बारे में, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का ही गीत।
0: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना।

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, 6 महीने में, किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। इसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर।
0: जी,
1: सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर 1 कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निप्पल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना, या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये

0: सबके अलावा ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रही हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं अली सरदार जाफरी के इस कलाम के साथ, आवाज जगजीत सिंह की।

पामेला जैन की आवाज में अभी आपने मदन मोहन महेश्वरी की ये रचना सुनी, संगीत दिया था कुमार मंजुल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।
1: एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में आप सुनिए प्रतिभा सिंह बघेल का गाया कमलेश सोनावाला का ये गीत।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास।

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल का गाया ये गीत।

0: ये आवाज थी जुबिन नौटियाल की।
1: तोड़ के ना जाओ मेरे हम नवा।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गालिब का ये कलाम।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की और आप सुन रहे थे गालिब का कलाम। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मधुशी का गाया ये पारंपरिक गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टांसावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनोबो ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों आज विनोद खन्ना जाने माने अभिनेता, जी हाँ जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं कि उनकी पर्दे पर एक शख्सियत अलग पहचान रखने वाली थी, है ना। उनकी आवाज़, उनका व्यक्तित्व और अभिनय में एक खास ठहराव था और हर किरदार को वो यादगार बना देते थे। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उन्हीं को याद किया है उनकी फिल्मों के जरिए। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग, गीतकार फारूक केसर, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी।

कार्यक्रम में आप सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की, फिल्म का नाम परवरिश।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।

और आइए अब सुनते हैं साहिर के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन, आशा भोंसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए। स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीदा।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। गीतकार गुलशन बावरा हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

0: नहीं,
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल।
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात, क्योंकि

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताज़ा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी बातें इस मुलाकात में शामिल हैं। कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब होती है ना, न कोई वादा न कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं लेकिन जाने न जाने क्यों एक शख्स दिल को अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला नहीं बल्कि दो दिलों के बीच बुना हुआ एक नाजुक रेशमी पुल है। एक उत्सुक मन दूसरे समृद्ध मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करता है, तब शब्द और अर्थों के पर्दे एक एक करके आसानी से खुल जाते हैं और कोई नहीं कह पाता कि आज की मुलाकात बस इतनी। वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है। और आगे आपने कल के कार्यक्रमों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने कहा है कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस, ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे सादे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को, और याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नज़ारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है, ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए। वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहां, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ, तो बताइए ना कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, ऊपर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती हैं, ये वो मंजर है जहां मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे के मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी भेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या, विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती हैं कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वहीं एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो तारीख याद है न ही दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहां से आवाज आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही हाल हर बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहां बैठते हैं लोग, ये हर बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। वही एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव, अच्छा आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूँ और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज भी अच्छी लगती है। चलिए आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो यह अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है। इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त परिवार रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारी श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाती है और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है। आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी, न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया ये अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा, बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है। उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा की तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया। दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्म पत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नजरें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी। बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ, पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली। कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान बनी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अरे तू लिख

0: अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ, क्या हुआ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वही एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात।
1: आकाशवाणी मुंबई,

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्दों में, बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना? क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूँ, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुँचा भी देंगे उन तक। वही एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई, बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कंफ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है। क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे। क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं? अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ, और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे जैसे मुझे बरसों से जानते हो। ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फ़ोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों से फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगे पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती हैं कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी। आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी हैं और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही हैं। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो भय वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत जिंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा, आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद हैं, कौन कौन से गीत हैं। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रखती है, रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। उसी समय मुझे पुराने महाभारत के श्री कृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखती है कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती के पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड डे चल रहा है।

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है पत्थर पर। सड़क किनारे पड़ा एक साधारण सा पत्थर शायद हमें बहुत सामान्य सा दिखाई देता है। हम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब किसी शिल्पकार के हाथों में पहुंचता है तो लगातार चोट और तराश के बाद एक सुंदर मूर्ति या बेशकीमती कलाकृति का रूप ले सकता है। यही पत्थर हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है कि मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वो हमें तराशने आती हैं। पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दृढ़ता। वो धूप, बारिश और मौसम की मार सहता है। कभी वो रास्ते का हिस्सा बनता है और कभी किसी इमारत की नींव, तो कभी किसी कलाकार की कल्पना का एक सुंदर रूप।

रास्ते में आने वाली असफलताएं, आलोचनाएं, परेशानियां और संघर्ष हमें भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों से हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए छेनी की चोट जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य, आत्मविश्वास और दुनियादारी की समझ सिखाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, लेकिन शायद हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई किसी नई क्षमता को सामने लाने का अवसर होती हो।

जिस पत्थर ने चोट सहना सीखा वही मूर्ति बनकर सम्मान पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कठिन परिस्थिति को चुपचाप सहते रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर सही लोगों से मदद लें, अपने गलतियों को स्वीकार करना सीखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। सड़क पर पड़ा पत्थर किसी के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन किसी कलाकार के लिए वही पत्थर अनमोल हो सकता है। इंसान की क्षमता भी ऐसी ही होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। चोटों से घबराना मत, हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ चोटें तुम्हें तराशती हैं और वही तुम्हें एक दिन खास बना देती हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य

0: को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
1: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दो गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
3: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे

0: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से

0: यह अवस्थी आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत दिया था रवि ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार का गीत, शब्दकार शैलेंद्र और संगीत ओ एस डी बर्मन का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल। फिल्म का नाम है सरहद और आवाजें आशा भोंसले और सी रामचंद्र यानी चितलकर की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे, आवाज गीता दत्त की। इस गीत को शकील नोमानी ने लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास की बोल, एसएन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

अदा मस्ताना सर से।

से उड़ते ये बाल तेरे, क्या नखरे दिखाते कमाल तेरे, और तेरी पतली कम

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गांव की महिलाओं ने, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है, तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें, तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती, और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, यानी कि सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है, तो माटी जो है वो गांव की है और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही हैं। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनसे हुई थी,
0: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज के लिए बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे, ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गांव-गांव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना जहाँ इन्होंने ये सब नए शब्द थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहाँ उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
0: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
1: बिल्कुल, और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई, और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यानी कि आप समझ लीजिए, जो भी कुछ गाँव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
0: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं, तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज आज एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी।
0: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचें कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है,
1: है
0: और
1: भी अच्छा।
0: अब बात करते हैं एक मुहावरे की जो है ओखली में सिर देना। यानी बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आबैल मुझे मारो और एक है ओखली में सिर देना, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मुसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं मैं तो करूंगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं, कहीं पर आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सेहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि

0: और दूसरा गाना लगा दे, तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
1: बिल्कुल, यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब धनादन धनादन मूसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में थी क्यों दिया था हमने ये सिर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो और हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
0: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
1: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं, लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी, नुकसान या संकट आने वाला है, स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन

0: तो मूसल से क्या डरना, बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है, ऐसा भी नहीं है।
1: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो खराब हो गए तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया है तो अब डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
1: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए अब हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

0: आरती, ये खूबसूरत गीत था ब्लफ मास्टर फिल्म का, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और हम के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई फिर से डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भाई आरती? मिठाई
1: आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार? नहीं, सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार तो होता ही है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें। कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज, भाई नहीं रख दो काम की चीज है।
1: बिल्कुल। और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारत फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते। कोई डिब्बा है तो उसको खाली चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: के साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद, यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला।
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पे डाल दिए जाते हैं, और घर से जब हम निकलते ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं ना कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने, सजावट की चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, भाई जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो। और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मैं
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो,
0: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से हटें, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में, लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते हैं, ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें। इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
1: बिल्कुल। और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का उत्साह तो ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, है ना?
0: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है, कुशन को उठाया यहाँ से वहां रख दिया, ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो

0: काम के बहाने भी सरा से कर
1: बिल्कुल
0: लेते
1: छोटी छोटी चीजें रखी, अच्छा ये चीज वहां है वहां रख दी, देखो हम काम कर रहे हैं, दिख रहा है क्या, देखो हम काम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
0: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते
1: बिल्कुल
0: हैं।

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहाँ सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हों और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई
1: है। बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से ही सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहते

0: फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
1: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है। ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहां एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियाँ देती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही हैं। मतलब चीजें हैं कि देखिए, साफ सफाई घर में होनी चाहिए बहुत सारी, जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है, वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
1: और
0: है।
1: और इसका पूरा सीधे कहते कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में, और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में। फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है, और पूरा घर कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसियों के घर भी कई बार हम मिठाइयाँ पहुँचाते हैं उनसे, ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और सबके साथ मिलकर ये खुशियाँ बांटना ये बात ही अलग होती है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है। मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीज़ें मुझे मिलती नहीं हैं और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीज़ों में मेरी जो चीज़ें वो मैं ही रखता हूँ, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है। मतलब त्यौहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना, कि जब त्यौहार में सफाई होती ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें, ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
1: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की, अपनी चीजों की सफाई कैसे रखनी, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं, और घर को साफ करने के लिए भाई नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए, और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुलाकर त्योहारों में उनसे भी गले मिलिए।
0: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुशी, संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियां, जो खुशियां हैं उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
1: बिल्कुल। घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्योहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है, जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज़ होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको ख़ास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी जो सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज है उनके लिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल। किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोजमर्रा के जो काम है उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती, किसी को थोड़ी कम होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं। यहीं से सोच बदलने की जरूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल। और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाजों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से श्रोता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सब सजावट करते हैं,
1: लेकिन संदेश आना बंद ही नहीं हो रहे हैं।
0: हाँ तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताज़ा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्यौहार को सच में त्यौहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया। तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी की धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयां और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है, फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि सायोनारा कहने का
1: वक्त आ गया है। सायोनारा कह दे,
0: और कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर ये वादा करते हैं,
1: लेकिन कोई और। और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आदि श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कौन व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत जिसका नाम है उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेड के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था। मेरे सारे अभी मतलब मैं थोड़ा सा खोया हूँ क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूँ, कैसे बात करूँ।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए है ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज्यादा जरूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम आए, विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ, तो विविध भारती किस तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताएं, वहां से शुरुआत करते हैं।
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं। पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए, तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
1: हाँ, 4 या 5 बजे।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, हम बच्चे ही थे और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊँ मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया।
1: अच्छा।
2: हाँ जी,
1: क्या बात है।
2: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसी की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे
1: जी जी।
2: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
1: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरे जिंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए
1: जी।
2: है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि एक बाल्य मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना चाहता हूँ।
1: ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर उनकी जिंदगी

0: पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
1: शुक्रिया।
0: बचपन की जैसे बात की आपने, तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए, क्या वो इस चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जिसे सही मानों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन?
1: बिल्कुल, अरे वाह। एक तो जहाँ पे मतलब, क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हों 2:30 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था और गाने चल रहे होते थे। मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी, तो जहाँ मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहाँ अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे।
0: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे?
1: नहीं, कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा।
0: अच्छा,
1: है ना। बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है। तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
0: अच्छा।
1: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा। तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊं मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विविध भारती ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
0: और सपनों की नगरी में आना ही है।
1: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे
0: जी,
1: तुम्हारा है तुम लड़ो।
0: बचपन में कैसे थे, नटखट थे?
1: अरे बहुत।
0: किस तरह के, आपने बचपन को जिया है जैसे,
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: किस
1: जी,
0: तरह
1: जी
0: से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच?
1: बिल्कुल,
0: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
1: हाँ, मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह कि जहाँ मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है।
0: अच्छा।
1: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहाँ पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहाँ पे 3-3 पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन।
0: अच्छा।
1: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गाँव, 3 पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
0: जी।
1: और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
0: बिल्कुल।
1: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी 5 भाई थे और उनमें से 3 भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई BSF में है, वहाँ एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं।
0: अच्छा।
1: बट मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था।
0: हाँ।
1: कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलोसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास।
0: बिल्कुल।
1: मैं बेवजह खुश हो जाता हूँ कई बार,
0: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है।
1: हाँ।
0: जिसे हम बाहर तलाशते हैं
1: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा और मुझे काम मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: यही एटीट्यूड था मुझे, कभी भी शक नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे,
0: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
1: हाँ।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
1: एक बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है बेटा, फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
1: यस।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो
1: जी
0: बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी। देखिए, पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा,
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस लिवाओ।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी,
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ। और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, वो मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो, है
0: बिल्कुल।
1: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
0: ओके।
1: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: ये आपने पटना से किया
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जी?
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
0: बिल्कुल।
1: ये सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी,
0: था,
1: हाँ जी, हाँ
0: इसीलिए
1: जी, हाँ
0: वो
1: जी,
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं, सुनने
1: देखो,
0: वाले हैं।
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूँगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूँगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
0: जी।
1: और अब

0: सा किस्सा है वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहां से आया?
1: ये सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है, क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन। तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ। मेरे यहाँ ना वही जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। बोले नहीं नहीं फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ रही है कि भाई 1, 2, 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चूंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं अच्छा। मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई और तब तक 12:30 हो चुके थे, और मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई। बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1-2 महीने के बाद फिर से पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था
0: जी।
1: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्म,
0: रच बस गया था सिनेमा।
1: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियां आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं आज।
0: जी, जी। और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
1: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे। तो मैंने ना 1 से 12-15 सवाल तैयार करके रखा था, यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
0: वो मैनिफेस्टेशन जैसे कहते
1: हैं। और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है। मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूँ मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
0: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा चादर।
0: ये उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे नहीं सपने देखने से। हाँ। और जो चाहेंगे वो होगा,
1: हो जाए,
0: बस वो मेहनत की जरूरत है।
1: एक ही जिंदगी मिली है ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जियेंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव है
0: जी, जी
1: है ना।
0: मन की खुशी
1: है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा
0: जी।
1: नहीं नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका जो होता है ना, वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां, लोग को लगता है अरे सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूँ माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या

0: बताऊं आपको, मैं इसके लिए मुंबई में हूं, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला, गाड़ी, घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूं, एक कमाल की एनर्जी में होता हूं। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है ये बात, एक्शन और कट
0: बिल्कुल
1: के बीच का
0: बिल्कुल
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अभिनय भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूँ और समझता हूँ कि उस लम्हे को जी लूँ, उस पल को जी लूँ। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश होती है, उसके आसपास भी चला जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहां पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना।

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहाँ थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे।
0: अच्छा,
1: नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे।
0: अच्छा।
1: कि नाटक ना लोड लेने की चीज़ नहीं है, इसको खेलना है, नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको इंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक।
0: अच्छा।
1: सौतेली माँ का अत्याचार।
0: अच्छा।
1: एक दो कलम उठा लो बंदूक
0: जी,
1: कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो
0: जी।
1: मैं उसमें बाल्य कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था, पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे। गांधी
0: अच्छा।
1: गांधी मैदान में,
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूँ कि क्राफ्ट सीख लूँ, तरीका सीख लूँ, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊँगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लगता था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली कैरेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें
0: जी,
1: है ना, कैरेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज ख़त्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहाँ पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए, साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूँकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था
0: बिल्कुल,
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो सब नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊंगा।
0: अच्छा।
1: और मैं उस 1 महीने में राग दरबारी एक प्ले था, श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय।
0: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की है,
1: हाँ
0: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े और उसके बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
1: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
0: बिल्कुल।
1: मेरे अलावा।
0: और
1: ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में। IMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहाँ जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपये मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मैं पूरे पैसे नहीं आते थे।
0: अच्छा
1: है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7th October 2017 को आ गया था मैं।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल डेट याद है।
1: हाँ जी, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
0: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी याद, वो जो पहला दिन था, उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूँ, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते आप, मुंबई के पहले दिन को।
1: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो। कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता। है ना, 50 चीज़ें सोचता। उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीज़ों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
0: अच्छा।
1: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया।
0: अच्छा।
1: ताकि कोई देख न ले ये क्या कर रहा।
0: अच्छा।
1: फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
0: जी
1: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन, तीन दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
0: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था।
1: मजेदार तो बिल्कुल था
0: है ना, उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं,
1: कभी भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
0: जी,
1: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, या मुंबई में हूँ, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूँ
0: जी,
1: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता
0: जी।
1: तो वो दिन बहुत ज़रूरी थे, वो अनुभव बहुत ज़रूरी था, तभी तो आज जब चीज़ें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उड़ता नहीं हूँ, उछलता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
0: अच्छा।
1: तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहाँ भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए
0: जी जी,
1: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहाँ,
0: ओके,
1: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूं ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊं तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था, वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहां से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था।
0: अच्छा।
1: और सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तरबतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात यह है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे। पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने देखा है, भोगा है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं, इसलिए ये सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
0: अच्छा।
1: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था उसमें। अच्छा। तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है। मैं रोज 12 से 15 20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया। अच्छा। उसमें सोल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई मेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के दो तीन जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे दो जूते दिए थे, तो वही दो जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर एक डेढ़ दो साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
0: आशीर्वाद है,
1: आशीर्वाद है। अगर वो लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
0: चलिए, यहाँ सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
1: ओके।
0: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
1: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, मैं सारे बचपन के सारे गाने लेकर के
0: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत।
1: हाँ जी।

सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: करो वादा,
2: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम विविध भारती मुंबई से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं, ठीक 5 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार।

जानते हैं वो फिर भी अनजान बनते हैं, पूछते हैं हमसे कि आपकी पसंद क्या है, खुद जवाब होकर हमसे सवाल करते हैं। सुनो तुम, खुशबू की तरह मेरी हर सांस में अपना प्यार बसाने का वादा करो। रंग जितने तुम्हारी मोहब्बत के हैं मेरे दिल में सजाने का वादा करो। सिर्फ लफ्जों से इकरार होता नहीं, यक तरफा प्यार होता नहीं। मैं तुम्हें याद रखने की कसम उठाऊं, तुम मुझे ना भुलाने का वादा करो।

दिल की हर धड़कन आपका नाम सुनाती है। आपसे इश्क है बेहद और बेहिसाब, ये बात मेरी खामोशी सुनाती है। एक तुम्ही को खुदा से मांगा है, जब भी मांगी कोई दुआ पास आओ ये इल्तिजा सुन लो। प्यार है तुमसे बेपना सुन लो, इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे, तुम हो चाहत की इंतहा सुन लो। इश्क भी तुमसे प्यार भी तुमसे, मेरे इंतजार की राहत मेरे दिल की चाहत हो तुम, आँखों से छलकता जाम हो तुम, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम, सिर्फ तुम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मसर्रतें तेरे नाम, मेरे हम कदम मेरे हम नशी, ये रफाकतें तेरे नाम। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आईना, कभी अक्स तू, मेरे हम नवा मेरी ख्वाहिशें मेरी मोहब्बतें तेरे नाम। कभी ये हंसी, कभी ये नमी, कभी रंजिशें, कभी कुर्बतें, मेरी जिंदगी की ये सभी हसीन इबारतें तेरे।

मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है तेरी हर एक आदत से, तेरी बेजा शिकायत से, तेरी राहों में रुकने से, तेरे कदमों की आहट से, तेरी मुस्कुराहट से, तेरी आँखों के जादू से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरे कातिल जफाओं से, मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है तुमसे।

चांद की किरणों, तुम उसको छू कर आओ ना। वो कब क्या करता है, वो जागता है या सोता है, वो शाम को कैसा लगता है, वो रात को कैसा दिखता है, जब सोए तो कैसा लगता है, जब जागे तो कैसा दिखता है। तुम चुपके चुपके जाओ ना, तुम

0: साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एआर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुरु फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के हैं बोल और एआर रहमान की है तर्ज।

लीजिए अब सुने किशोर कुमार और निशी कोहली की आवाजों में अनजान का लिखा और बापी लहरी का संगीतबद्ध क्या गाना। फिल्म का नाम है नौकर बीवी का।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है महासटैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
10: तुम्हारी याद सताती है।
7: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए अलीशा चिनाय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल, और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: दोस्तों आइए अब सुना जाए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में नौकर फिल्म का गाना। मजरू सुल्तानपुरी की है बोल और आर डी बर्मन की है तर्ज़।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।

0: मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज MT ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा और शांतनु मोइत्रा का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में हजरत जयपुरी का लिखा और रविंद्र जैन का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में शराबी फिल्म का गाना।

अगला गाना हमने लिया है फना फिल्म से, आवाजें हैं शान और कैलाश खेर की, प्रसून जोशी हैं गीतकार और संगीतकार हैं जतिन ललित।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जोधा अकबर फिल्म से जावेद अली ने गाए से जावेद अख्तर के हैं बोल और ए आर रहमान की है तर्ज़।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोका के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज के शेष कार्यक्रम इस प्रकार है। अब से थोड़ी देर में शाम 6:35 से सुनिएगा संध्या रंजन। शाम 6:45 से आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज 6 कड़ी प्रसारित की जाएगी। आमंत्रित कलाकार हैं गायक हूँ संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन। शाम 7 से फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 से हवा महल के अंतर्गत हास्य नाटिका आपको सुनवाएंगे। वजन घटाओ लेखन वीएम आनंद का, निर्देशन कमल दत्त का। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 से और आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 से।

रात्रि 9:30 से आज के फनकार सुनिएगा। इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विनोद खन्ना पर। रात 10:00 से छाया गीत आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुत करता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात और रात 11:00 से रंग तरंग।

कल दिनांक 7 अक्टूबर के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। सुबह 6:05 से सुनिएगा वंदनवार, सुबह 6:35 से सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान, कल भाग 334वां, सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनिएगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, कल 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं

सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 से सुनिएगा त्रिवेणी, आलेखुम स्वर चंचल वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कल सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गजल साम्राज्ञी बेगम अख्तर पर, आलेखन सर यूनुस खान का। कल सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉयड के सितारे के अंतर्गत अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत सुनिएगा प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनवाएंगे। दिन में 12:05 से सुरीला सफर इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 1 बजे। दोपहर 2 बजे से सुनेगा त्रिवेणी। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से सखी सहेली। दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। इसके अंतर्गत फिल्म लेखक निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग सुनिएगा प्रस्तुति जुबैर खान की। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन सुनेगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। शाम 7 बजे से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। शाम 7:45 से

रात्रि 8 बजे से हवा महल के अंदर का सुनेगा झलकी। अक्कल के नाथ, लेखन धनेंद्र कुमार जैन का, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। रात्रि 8:15 से चित्रलोक, रात्रि 9 बजे से आपके लिए, और रात 10 बजे से छायागीत सुनेगा आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हनुमान अंश फिल्म के इस गीत के साथ।

0: बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साधु व्यास तिवारी की आवाज में हनुमान अंश फिल्म का ये गीत। गीतकार और संगीतकार भी थे साधु व्यास तिवारी। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में मिस मेरी फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण है गीतकार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं छठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा हमारे सामने मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि उनके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला है संगीत सरिता की इन कड़ियों में, और जो उन वो ज्ञान के मोती हमें दे रहे हैं, हम भी अपने को समृद्ध कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी समृद्ध हो रहे हैं। आज केएल सहगल के बारे में वो जानकारी देंगे।
2: कुंदन लाल सहगल जी की कुछ रचनाओं को मैं सुनवाना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं, चूंकि बात हो रही है भक्ति रस की
1: जी,
2: तो एक रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत अद्भुत आदान प्रदान हुआ है। इसका मतलब कि जो कबीर साहब ने लिखा था
1: जी,
2: वो आपको कहीं महाराष्ट्र में, कहीं कर्नाटक में, कहीं बंगाल में वही भाव आपको मिल जाएगा। या मीराबाई ने अगर कुछ लिखा था, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं उसमें से एक भी भजन मीराबाई का नहीं है, यानी कि उनकी भाषा में नहीं है। अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। तो हमारे यहाँ साधुओं की एक भाषा होती थी, जो साधु बन जाते थे उनकी आपस में बातचीत करने की जो भाषा होती थी उसको हम सधुखड़ी बोलते थे, जो हम बहुत ही अच्छी भाषा

0: हिंदी में बोलते हैं उसको हम खड़ी बोली बोलते हैं, तो ऐसे अलग अलग नाम है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ी, मेवाड़ की भाषा में थे।
1: जी
0: अब मेवाड़ी भाषा को समझना आसान नहीं था, तो उस समय गीता प्रेस गोरखपुर के आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने वियोगी हरि नाम के, जो बाद में एक बहुत बड़े कवि बने, वियोगी हरि जी को, जो बिल्कुल तरुण थे उस समय, उनको दायित्व दिया कि भाई तुम इस इन सारे मीराबाई के भजनों का सरलीकरण करके मुझे दो, ताकि मैं ये प्रकाशित करूं तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा,
1: जी जी
0: क्यों गीता प्रेस से उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने वो भाव तो सब समझ लिया है, पर इसकी भाषा क्या हो। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्या। बोले मेरे हिसाब से इसको कबीर की भाषा में करते हैं। बोले अच्छा, ये कौन सी भाषा है। तो बोले कबीर की जो अधिकांश भजन है वो सधुखड़ी भाषा में है।
1: जी जी
0: तो अब आपको मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं कि कबीर का जैसे है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अब ये भोजपुरी नहीं है, ये सधुखड़ी भाषा है। तो वियोगी हरि जी ने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई,
1: जी
0: जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
1: जी
0: तो ये इस तरह का हमारे यहाँ बहुत सारा प्रयोग हुआ कि भावों की यात्रा हुई,
1: जी जी
0: शब्द कहीं पीछे छूट गए। और वैसे भी हमारे यहाँ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर
1: जी
0: उससे
1: बिल्कुल
0: भी महत्वपूर्ण है भाव, कि आपके भाव कैसे हैं। तो ऐसे ही एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, यद्यपि मैं स्वयं भी गाता हूँ, हम सब गाते हैं, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया,
1: जी जी
0: जिन कवियों की का पूरा आपको संग्रह मिलता है, उसमें से एक कवि का नाम है तुलसीदास, जिनका लिखा हुआ आपको रामचरितमानस मिलता है, फिर बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं।
1: रामायण है, और
0: हाँ
1: मतलब रामायण अलग सरलीकरण करके।
0: हाँ तो वो सब है, लेकिन कहीं भी आपको ठुमकी चलत रामचंद्र नहीं मिलता है। ऐसे ही कबीर के भी बहुत सारे भजन हैं जो आपको कबीर के बीजक में या कबीर की पुस्तकों में या गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिलते हैं,
1: जी
0: पर वो जनमानस में लोकप्रिय हैं। तो इसका एक कारण ये था कि उस समय जो भी लोग थे उनका कहना था कि ये भाव तो पहुंच जाए,
1: जी हाँ
0: ये भाव चला जाए, अच्छी बात है, लोगों को मालूम होना चाहिए। तो
1: जी
0: उस तरह से इसलिए जब फिल्में बननी शुरू हुई तो उस समय इस तरह के भी प्रयोग हुए कि कुछ तो उन्होंने ओरिजिनल जो भजन थे वो ले लिए। अभी जो आप आदरणीय कुलंदर लाल सहगल जी की हम रचना आपको सुनाने जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम था भक्त सूरदास।
1: जी जी
0: श्री डीएन मधोक एक बहुत अच्छे कवि थे, उनके शब्द हैं।
1: शिखर दादा, हमारे जहन में एक सवाल आ रहा है कि उस दौर में जब कुंदनलाल सहगल गा रहे थे तो उस समय बहुत सारे दिग्गज कालजयी कलाकार थे, कानन देवी थी, खुर्शीद और पंकज
0: बिल्कुल
1: मलिक, तो ये एक दौर था, एक पाठशाला थी इन गायकों की, तो उस दौर की जो गायन परंपरा थी उसकी कुछ विशेषता अलग से थी, ये कुछ बताएंगे इस बारे में?
0: सबसे पहले तो एक बांग्ला का प्रभाव था, मैंने 1930 से लेकर के 1945 46 तक के गानों में
1: जी
0: आपको बंगाल का एक
1: जी
0: प्रभाव
1: जी
0: दिखाई देता है, क्योंकि आरसी बोराल
1: जी जी
0: और पंकज मलिक, स्पेशली पंकज मलिक जी, और बाद में वो कंटिन्यू हुआ यहाँ पर, जब बंगाल में आए तो सचिन देव बर्मन,
1: जी जी
0: फिर आपके सलील चौधरी और इस तरह के सारे, और सिंगर्स भी आए, हेमंत कुमार जी।
1: जी
0: तो एक बंगाल का वो एक प्रभाव रहा, पर उसमें अच्छी बात ये थी कि उसमें पंजाब का भी अंश मिलने लगा, पंजाब के भी बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार थे। महाराष्ट्र तो भक्ति की धरती थी,
1: जी जी
0: जिस शहर में मैं इस समय रहता हूँ पुणे, उसको पुण्य नगरी कहा जाता था,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: सारे संतों की भूमि थी वो। तो ऐसी बहुत विशेषताएं यहाँ पर जुड़ती गईं, और कभी भी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, संतों को लेके लड़ाई नहीं है, आप
1: जी
0: समझ रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: अगर विवेकानंद आते हैं तो कोई ये नहीं कहता अरे ये तो बंगाली हैं भाई, हम
1: हाँ
0: इनका काहे को सुने, हम कोई,
1: जी
0: आप
1: जी
0: देखेंगे उनके ऊपर कोई कार्यक्रम होगा तो तमिलनाडु के भी लोग आ रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और पंजाब का भी व्यक्ति आ रहा है, कबीर सुनने के लिए उड़ीसा का भी व्यक्ति देख रहा है। तो हमारे यहाँ ये बहुत उदारता रही
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: संत वाणी की, कि उन्होंने पूरे समाज को जोड़ कर रखा। कुंदन लाल सहगल जी एक विशेष गायक थे, आज के श्रोताओं को शायद अनुमान नहीं होगा, लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी, यानी मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरी बुआ और हमारे दादाजी के कालखंड में जो सुपरस्टार हुआ

0: करते थे, उनका नाम था KL सहगल,
1: बिल्कुल
0: और लोग पागल थे उनकी, और ऐसी उनकी अद्भुत आवाज थी कि वो उनकी जैसी आवाज केवल उनकी ही थी। और मैं चाहता हूं कि हम लोग अब मधुकर श्याम हमारे चोर, सूरदास जी के शब्द हैं, आप लोग इसका आनंद लें।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये रचना।

0: दो।
1: आपने अभी ये रचना सुनी आदरणीय कुंदन लाल सहगल जी के स्वरों में, मधुकर श्याम हमारे चोर। सहगल जी उन गायकों में से हैं जिन्होंने कलकत्ते में भी भरपूर काम किया और फिर मुंबई आकर के यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मुंबई में वो रहते थे माटुंगा में, हमारे सेवन गार्डन्स के पास उनका बंगला था। और मैं जब पहली बार मुंबई आया तो मुझे पता नहीं था कि वो कभी कहाँ रहते हैं, तो मैंने ढूंढते ढूंढते मैं उस गली में गया, मैंने कहा सहगल साहब कहाँ रहते थे
2: जी,
1: बोले यहाँ रहते थे। तो मैं बाहर जाकर उस मकान को प्रणाम करके आया,
2: क्या बात,
1: वहाँ की धूल। क्योंकि ये सब वो गायक हैं जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को सींचा है
2: जी।
1: तो मैं चाहता हूँ कि एक और रचना हम सहगल साहब के स्वरों में सुने और आज के इस शताब्दी की भक्ति रस में ये एक रस का एक बूंद, रस की एक बूंद हम लोग जरूर उसको ग्रहण करें। कहूं क्या आस निराश भई।

0: आज की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में अगली कड़ी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इस श्रृंखला की आज आपने छठवीं कड़ी सुनी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिश्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम विविध भारती मुंबई से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं, ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए सलाम नमस्ते फिल्म का गाना। शान और गायत्री अय्यर की आवाजें हैं। जयदीप साहनी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। लीजिए अब सुनिए शंकर महादेवन और रवि रैक्स खोटे की आवाजों में कल हो न हो फिल्म का गाना। जावेद अख्तर हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। जयमाला कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में दिल चाहता है फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के हैं बोल और शंकर एहसान लॉय की है तर्ज़।

फौजी साथियों, अगला गाना हमने लिया है सलाम इश्क फिल्म से। आवाज़ें हैं शिल्पा शंकर महादेवन और लॉय मेंडेसा की, समीर के हैं बोल और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

फौजी साथियों, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में बार बार देखो इस फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मिला तू एल्बम के गाने के साथ। अपूर्व हैं, गायक इसके और गीतकार और संगीतकार भी हैं अपूर्व।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। लीजिए अब सुनिए गुरु रंधावा और निकिता गांधी की आवाजों में एल्बम नाच मेरी रानी का ये गाना।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश नेहा भसीन की आवाज में फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं सोहेल सेन।

0: इस गाने के साथ ही आज का पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार।
1: 102.8 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम विविध भारती मुंबई से बोल रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आइए अब सुनते हैं एक गीत जिसे हमने लिया है पल पल दिल के पास फिल्म से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और परंपरा ठाकुर की, बोल हैं सिद्धार्थ गर्मा के, धुन बनाई है सचेत परंपरा ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जीडी कौर की आवाज में सुवेदार फिल्म के गाने के साथ। उठा, उठा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए बी प्राक और सुकृति कक्कर की आवाजों में प्रेम कीटाणु फिल्म का गाना।

0: हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: लीजिए अब सुनिए नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। सुनील सिरवैया हैं गीतकार और संगीतकार हैं मोंटी शर्मा।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम है गीतकार और संगीतकार हैं देवी श्री प्रसाद।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कॉकटेल 2 फिल्म का गाना। आवाजें हैं प्रीतम, अमिताभ भट्टाचार्य, शिल्पा राव आर वन की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम की है तर्ज़।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मधुमती बागची और जावेद अली की आवाजों में ओ रोमियो फिल्म से गुलजार के बोल और विशाल भारद्वाज की तर्ज कहिए।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे

0: परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव।

0: भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
1: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
2: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
0: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
3: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हाल्जेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिर सुबह होगी फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं खयाम। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों का गिला।

गुस्ताख निगाही के बाद कोई दीवाना हो ही जाता है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मुल्ज़िम फिल्म का ये गाना समाअत फरमाएं। शकील बदायनी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है रवि ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम गहरा दाग।

आइए अब सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
1: हवाओं पे लिख दो
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
2: मेरा साया
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ। लीजिए अब सुनिए ज्वेल सिफ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल और एसडी बर्मन की है तर्ज। फिल्म का नाम बता चुका हूं, ज्वेल सिफ।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गाइड फिल्म का गाना। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: खेला करता था।
2: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहां दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है।
3: तो भी हमें क्या करना चाहिए?
2: जो पंचों की राय,
3: तुमने लड़की को देखा?
2: देखा,
3: लड़की पसंद है।
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
4: दुश्मन

बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन

उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: हाथ आयु ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है।

अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

इम्तिहान के इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: नहीं इधर कोई नहीं है साहब।
1: ओ बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो अपन अभी देख के आएंगे।
2: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
0: ऐसा क्या?
1: जरूर देखेंगे साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन।
2: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम भी तो एंथनी है ना?
1: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगे लाया, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
3: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: जानी फिल्म हेरा फेरी।
1: पर चिंता की कोई बात नहीं,
2: नहीं
1: हम हैं तेरे साथ,
2: बिल्कुल
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात,
2: क्योंकि

0: वक्त की है फेरी है।
1: और ये है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदा एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गामा एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं बस वही एक चेहरा नजर आता है। इंसान के तमाम चेहरों में बस वही एक पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है। जे चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म न हो।

किसे पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नरमो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा। कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

0: चांद के पार चलो।
1: कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था, राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट जाता है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झर जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर। लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन जंगल सी हो जाती है।

जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।